اتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News. आप सुन रहे थे GFM Network पर KTN News.
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GFM 91.6.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मेयर में तेज तूफान है, बरसात सबब करण जो छितू मिथ्यू है, सोलर प्लेटू किड़ा सब एक औरत को है, नव जना जख्मी थी बेलार कणु सकर कशपोर कदकोर मटियारी खानपुर पिरे गोठ ठकराटो ओबाड़ो में बसकारो पनवाकिल देरपुर बेड़ो बख्शापुर दोदापुर ए बिन शहर में मिट्टी के तूफान बाद बरसात दादू खैरपुर नाथन छा।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो आया था ईरानी क्यादत के बुधाई छो आया था हाँ कें न कें सूरत में वायदो थियण घुर्जे। ईरान के वो करने की इजाजत न तो दी सके जो 47 साल का कर रो है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे नमाज का इंतजाम मुकम्मल। जनाजे जो जुलूस 24 कलाक अलविदाई तकरीबू 3 दिन जारी रहंदियूं। तहरान के डिप्टी मेयर जो आयत शहीद सुप्रीम लीडर की अलविदाई तकरीब ज़ुल्हज के आखिर ए महरम की शुरुआत में मुमकिन है। जनाजे की नमाज जगह की हतमी शिकिल डी पी वे। जनाजे नमाज ग्रैंड मस्जिद या इमाम खुमैनी के मज़ार से अदा कई वी। जनाजे वारे जुलूस में 15-20 लख मानू की शिरकत जो इम्कान है। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्त के कुम आए मशहद तई पेजा वो तदफीन इमाम रजा की मज़ार से थी। गालन में ईरानी सुप्रीम लीडर के सरगर्मी जो शायद मिली है। गाल ईरान से मुआदे की जमानत न है। अब्राहिम उर्मुज के मुकम्मल तौर से खोलण गाल पहले शर्त है। सीनेट कमेटरी के ब्रीफिंग नींदे अमरीकी परदे वजीर मार्को रूबियो चो है तहरान की रवायती दिफाई कौत घणे हद तक कमजोर थी वही है पर ईरान वट इन वक्त भी घणे तैदाद में ड्रोन्स मौजूद है। ईरान के पाबंदन में नरमी लाए रिचाल यूरेनियम के खाते बाबत जमानत देनी पवी। रुगो आपने उर्मुज के खोलण से तहरान से पाबंदन में नरमी न थी। ऑपरेशन एपिक फेरी कामयाब थो है। ईरान की समूरी नेवी खत्म थी वही है। हर किस्म की सूरत हाल के मुंह डेण लाय तैयार आयु कें भी सूरत हाल जो जरूरी तब्दील से भरपूर जवाब दिनो वो। ईरानी फौज जो ऐलान पाकिस्तान ने इनकलाब चो है। ईरानी फौज जवाबी कार्रवाई लाय पहली का तैयार है। पाकिस्तान में मुकर्रर ईरानी सफीर रजा मीरी चो है गाल तैयार आयु पर धमकी नाडो न चुकंदी।

0: न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर। हुकूमत सिंध।
1: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी। ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS नियर चिल्ड्रन पार्क सिराजुद्दौला रोड कराची, फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
2: इट्स 9:30 AM। This time check is brought to you by
3: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get it.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

वनी छोवणकार हित न गोली हो तके, वनी छोवणकार हित न गोली हो तके, लिखो कि न लतीफ़ चे बारो चो बेपार, थी सती बद संदरो फिरत पुनो थी पार, नायो नेण निहार तोमें देरो दोस्त जो। अस्सलाम वालेकुम समीन जी एफ एम 88.8 लाड़काने जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम रोशन सुबह साण करे अवां जो पंजो मेज़बान नेमतुल्लाह जुणी जो अवां जी खिदमत में हाज़िर ऐं क़बूल पवे सिक भरियो सलाम।

जी समाइन केड़ा लण वंजा खुश आयो ठीक आयो चाक चंग भला असन जी हर पल हमेशा अवां प्यारन सजनन लाए इहा ही दुआ हुंदी आहे त जिते बुजो खुश होजो कदे दुखियो दिन दिसो ऐं सदाई गुलाब जे गुलन जियां खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो आमीन। साईं मुंहिंजा हर माण्हू जॾहिं सुबुह जो निंड मां अखियूं खोले उथे थो तॾहिं हू चाहींदो आहे त हुन जूं अखियूं सभ खां अवल ॾिसनि त कंहिं सूंहं खे ऐं कंहिं प्यारे माण्हूअ खे कंहिं हसीन मंज़र खे हूअं बि साईं मुंहिंजा हर अखि जे ॾिसण जो पंहिंजो पंहिंजो अंदाज़ हूंदो आहे ऐं इहो ज़रूर बि न आहे हूंदो त जेका शइ जंहिंखे सुहिणी लॻे उहा ई सभ जी अखि उनखे ॾिसे ऐं उनखे हसीन नज़र अचे ऐं उन करे हिन काइनात जो नालो ई सूंहं रखियो वियो आहे। सूंहं त

सुठी सीरत सुठनि इख़लाकनि ऐं सुठनि किरदारनि जो नालो आहे। असां जॾहिं गौर सां सोचींदासीं त सूंहं असांखे हर हिकु ज़रे मिलंदी ऐं सूंहं ॾिसण सां असांखे पंहिंजे रब पाक जी कुदरत मिलंदी ऐं हसीन मंज़र मिलंदा जेके मालिक साईं जी हक़ीक़ी ईजाद आहिनि।

साईं जा चवंदा आहिनि त सावणीअ में ईअं हूंदो आहे त हिकु सिंह ते ॾांत जे हिकु सिंह ते वसे त ॿिए ते न वसे। सो हिन मौसम जेका बरसाति आहे ऐं उहा कंहिं शहर में कंहिं ॻोठ में वसंदी आहे त

मन वसंदी आहे। सो ॿ टिनि ॾींहनि खां हिकिड़ो सावणीअ जे बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे, जंहिंमें राति बि काफ़ी सिंध जे इलाइक़नि में तेज़ हवा यानी तूफ़ानी जेको आहे सो बरसाति हुई, ऐं काफ़ी जेको आहे सो पंहिंजो मिटीअ जो तूफ़ान बि हुयो, ऐं साईं जा आंधारी किथे जेको आहे सो मींहुं बि पियो, पर गड़े सां बि मींहुं पियो, ऐं किथे वण किरिया ऐं साइन बोर्ड किरिया ऐं सोलर प्लेटूं बि किथे किरियूं, पर साईं जा तमामु घणो नुक़सान बि थियो आहे, जंहिंमें जानी नुक़सान बि थियो आहे त माली नुक़सान बि थियो आहे, ऐं असां इहा गुज़ारिश कंदासीं जंहिं महिल हलंदड़ बरसाति हुजे या हलंदड़ तेज़ हवा तूफ़ानी यानि आंधारी हुजे त जेके असांजा ड्राइवर हज़रात आहिनि उहे मुसाफ़िरी खां थोरो एहतियात कनि ऐं साइड करे बीहंदा जिते अधु कलाक कलाक जी देरि थींदी, पर माण्हू उते सही सलामत पहुची वेंदो, छो त ॿियनि मुसाफ़िरनि जी जेका हिफ़ाज़त करणु जेको आहे सो अलाह जो कमु आहे, पर ड्राइवर जेको आहे सो एहतियात करे त बहितर आहे, छो त हलंदड़ बरसाति में हलंदड़ हवा में जेको आहे सो वण किरी पवंदा आहिनि, साइन बोर्ड किरी पवंदा आहिनि, सोलर प्लेटूं किरी पवंदियूं आहिनि, रस्ते ते अचानक जानवरनि जो बि निकिरणु थींदो आहे, त एक्सीडेंट गाॾी कल्टी थियण जो अंदेशो तमामु घणो हूंदो आहे, उन करे माण्हू कोशिश करे त इन्हनि शयुनि खां एहतियात करे साइड करे बीह रहंदो त वधीक बहितर आहे। ऐं साईं जा सिलसिलो बरसातुनि जो हवाउनि जो मिटीअ जो तूफ़ान जो जारी आहे, ऐं माण्हू कोशिश करे त हिन खां माण्हू पाण खे बचाए, ऐं वण बि जेके आहिनि घरनि में बि किरी पवंदा आहिनि, त जेको आहे सो माण्हू पंहिंजे ॿारनि जो पंहिंजे माल मता जो पंहिंजे पखी जो

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज। जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक।

0: रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वती का आसान व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में मेदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: जी एफ एम 88

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: मीरपुर खास मोरो मेरापुर सकरंड मटियारी ए मातली स्टेशन तव प्रोग्राम

वधो पिया ऐं मां जो मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो साईं मुंहिंजा मई महीने गुज़रण खां पोइ जून महीनो शुरू थी चुको आहे पर जेको मोकलनि जो सिलसिलो आहे उहो जारी सारी आहे छो त मई महीने जेका आख़िरी हफ़्तो हुयो यानी पछाड़ी वारो ॾहो हुयो त हुन में मोकलूं हुयूं ईद जूं ऐं ईद जूं मोकलूं गुज़रण सां गॾु ई वरी जेको असांजो पहिरीं जून खां जेके सरकारी मोकलूं आहिनि ख़ासि करे ॿारनि खे जंहिंमें स्कूल जी वेकेशन आहे ॿ महीना उहा वरी पंहिंजो थी चुकी आहे ऐं स्कूल जी वेकेशन थींदे ई हर ॿार मिट माइटनि ॾांहुं घुमण फिरण लाइ तयारियूं कंदो आहे के पंहिंजे नानाणे घुमण वेंदा आहिनि त के पंहिंजो टूर करण अॻे जंहिं टाइम में असांजे हिकिड़ो ॿुधाईंदा आहिनि वॾड़ा त पुराणे दौर में जॾहिं बि वेकेशन थींदी हुई त नंढड़ा ॿार पाण में चंदो कंदा हुया ऐं चंदे करण सां हिकिड़ो भत जो देगड़ो लाहींदा हुआ ऐं उन ख़ुशीअ विचां पंहिंजो शरबत जी बाटली बि खाईंदा हुआ ऐं ख़ुशीअ विचां मोकिलाए करे ऐं पंहिंजे घरनि ॾांहुं वेंदा हुया होमवर्क वठंदा हुया त वरी जेको आहे ॿिनि महीननि खां वापसि ईंदासीं उहे ख़ुशीअ जा लम्हा पंहिंजी जुदायूं करे वरी ॿिनि महीननि खां बाद वापसि ईंदा हुया पर हिन वक़्तु जेको वरी ॿारनि में सिलसिलो आहे जॾहिं बि वेकेशन थिए पई या हुन जा एग्ज़ाम पूरा थींदा आहिनि त पंहिंजे स्कूली ड्रेस ते जेका हुनजी यूनिफॉर्म हूंदी आहे उन्हनि ते वरी उहे ॿार हिक ॿिए खे पेन जी मस लॻाईंदा आहिनि मस लॻाए करे पंहिंजो मोकिलणी कंदा आहिनि का बि शरबत जो शीशो या को फतेहो कोन कंदा आहिनि पर साईं मुंहिंजा जेको सिलसिलो आहे घुमण फिरण जो वेकेशन में पंहिंजे टूरिज़म जो त उन सां गॾु कुझु अहिड़ा ॿारड़ा बि आहिनि जंहिंखे एहतियात करणु घुर्जे अॼुकल्ह शाखुनि में वाहनि में केनालनि में बैराजनि में पाणी अची चुको आहे ऐं नए फसल जूं तयारियूं शुरू थी चुकियूं आहिनि पर कुझु ॿारड़ा बिना एहतियात जे उन वाहन में वेहजंदा आहिनि ऐं उन में जेको आहे सो उट बि हणंदा आहिनि बहरहाल उन में अंदरि पथर हूंदा आहिनि ऐं वण किरियल बि हूंदा आहिनि त कोशिशि कंदासीं असांजी हमेशह इहा पंहिंजो सभिनी खे गुज़ारिश कंदा आहियूं त एहतियात कयो ॿारनि खे मनह कयो वॾनि वाहननि में वॾनि केनालनि में वॾनि बैराजनि में वेहजण खां वेहजी सघे थो ऐं पंहिंजे घरनि जे नलकनि में माण्हू मोटर हणाए नलको आहे उते वेहजे त थधो थी सघे थो माण्हू पर साईं मुंहिंजा जॾहिं माण्हू मोटी ईंदो स्कूलनि खां तेसिताईं मोकिलणी कोन्हे जुदाई कोन्हे का ऐं पंहिंजो सुठे नमूने सां पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे उन्हनि ॿारनि खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजे स्कूल खां वरी वापसि ईंदा जुदाई कोन्हे।

साईं मुंहिंजा ज़बान मां मिठा ऐं वणंदड़ ॿोल ॿोलण संजीद सुखनि कढण ऐं नरम ऐं साहींदड़ ॻाल्हाओ ॻाल्हाईंदड़ खे मिठी ज़बान या ज़बान जी फज़ीलत चइजे थो। अहिड़ा मिठड़ा ॿोल मिठड़ी ज़बान मां ई निकिरंदा आहिनि। इन ज़बान में जादू खां बि वधीक असरु थींदो आहे ऐं मुरलीअ खां बि वधीक मंडु जंहिंसां इंसान

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

फकीर गुलाम सेन जलालाणी खां ऐं हाफिज़ लखीमीर ढिलो, हाफिज़ सांवल ढिलो, शमीर ढिलो मोरे खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया। ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। ज़ोहेब कटबर, ज़ैनुल आबदीन, बिलावल कटबर ऐं नंढड़ी बिस्मा रहमत बुरमले लाड़काणे खां, अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी मीरपुर ख़ास खां ऐं मीरपुर ख़ास खां ई मोहम्मद अज़ीज़ जरवार ऐं मोहम्मद वसीम चनेसर बिहण, आज़ाद बिहण मोरे खां, आसफली चाचड़, वासफली बुगटी ऐं मेहताब चाचड़ माहौटन खां, मोहम्मद खान कुंभार, वफ़ा जमालदीन कुंभार, मोहम्मद अली कुंभार हाले पुटा स्टाफ मीरपुर ख़ास खां ऐं मोहम्मद ताहिर लुंड ॻोठ वलीदाद लुंडो सेठारजा खां ऐं रमेश कुमार कोहली ऐं रामचंद बि असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया। ॿाहिरां जी महिरबानी। ऐं नूरजहान जो कलाम आहे, दोस्तनि जी नाम पिया कयूं।

0: गुज़ारी
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील महा से और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
3: गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कर पाया, हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत।
4: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GFM की आवाज,
4: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जीअं समय न प्रोग्राम रोशन सुबुह में कुझु नाला आहिनि जेके अवां ताईं पहुचींदा हलंदासीं। ज़ाकिर हुसैन चांडियो लाड़काणे खां उन्हनि सां गॾु आहे मंज़ूर हुसैन खोसो, नादर खोसो ऐं अली गौर खोसो, मोहम्मद हनीफ रिंद अली खान, सद्दाम हुसैन रिंद ॻोठ जीअंद खान रिंद जेकाबाद खां, फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठ आगा खान जतोई खां ऐं ॻोठ मोलिन।

जी हा समीन हिकिड़ो मिक्स कलाम ऐं मिक्स लाॾो गीत होमेरा जनावर जे आवाज़ ॿुधो थी। इन ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो ॾींदा इजाज़त अलाह निगाहबान।

किपरो वेझो नए नाला कैनाल में पुट के बचाईंदे पीओ बुधी वो गोला जारी गोठ खोड़ी वे पैतृक सबब निगर गुलसन जावरी कैनाल में किरो तो पीओ दरिया खान कैनाल में रही वो वाले दरिया खान जावरी पुट के बुढ़ने का बचाए पान बुधी वो वासन पारा संदस गोला जारी खैरपुर वेझो बुधी वेल निगरी नौजवान भथंदा आया जिले के मुख्तलिफ इलाकन में हफ्ते अंदर बुधी वेल जंग अठ थी वो गोठ बेगमान के वे मीरवा कैनाल में बुधी वेल नौजवान अली रजा कुरेशी जो पंज ढी गुजरने बावजूद पतो न पो सठ्यो वाह में बुधी वेल नव वरें बिस्मा फुलपो टोबे पंज ढी गुजरने बावजूद हथ न आई खैरपुर आसपास में हफ्ते अंदर मुख्तलिफ बहान शाखन में अठ जणा वेझंदे बुधी फोत थिया घड़ी खैरो शहर में बुनियादी सहूलतों की खोट ए बिजली की बंदिश खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम पंजगुली चौक से शहर ने एहतजाज करने बाद कैंप कायम करे वरती शहरी अगवान चवण है शहर मसलन जो शिकार है बिजली भी ना हुकूमत मसला हल करे।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु
1: आप सुन रहे थे जीए एफ एम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: हेलो किजी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार। आपको और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल्स के थ्रू। तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, जिसके ऊपर कॉल की जा सकती है, जो कि आप कर रहे हैं। हमारा सेगमेंट सुर लगाओ गाना सुनाओ, और सुर लगाओ गाना सुनाओ में हम लेंगे आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स। सो फर्स्ट कॉलर इस सेगमेंट के चेक करेंगे जी कॉलर कहाँ से। हेलो
1: असलामुअलैकुम।
0: वालेकुम असलाम सागर भाई, कैसे ठीक ठाक?
1: खैरियत खैरियत हुआ, शुक्र करम करम मालिक ने।
0: अच्छा तो मुझे बताएं कि गाना कोई सुना रहे हैं आज आप हमें?
1: हाँ जी, मैं गाने के लिए तो कॉल की है।
0: तो सुनाए ना।
1: नैना मत खाओ, पिया मिल की आया, मेरे दिल की है आवाज बिछड़ा यार मिल जाए, मेरे दिल की है आवाज बिछड़ा यार मिल जाए, मुझे अपने रब से आज मेरा प्यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज बिछड़ा यार मिलेगा।
0: ओके सागर भाई, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। और जी इसके अलावा मुझे बताएं किसी को डेडिकेट करना है?
1: डेडिकेट हाँ दोस्त है मैम,
0: तो कर दे।
1: शौकत मीरानी और रमजान मोहम्मद रमजान कन्ना और मैं खुद प्रेमी सागर और मैम आप रुखसार मैम।
0: जल्दी जल्दी
1: बस बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया।
0: ओके अल्लाह हाफिज़। ये रहा गाना, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे।

0: GA सक्कर FM 88
1: सक्कर की।
2: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद

0: बाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: कुछ तो खराब है ना.
1: कुछ तो खराब है, हाँ ये बात है. चले खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, कुछ खराब नहीं है, हो जाता है कभी कभार. अच्छा मुझे बताएं कौन सा गाना है.
0: ये शुदाई का ओएसटी.
1: शुदाई का ओएसटी, ओके.
0: रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए जिंदगी के इन गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम हवा हो, तुम सुबह मेरी जिंदगी की हर दुआ तुमसे मिलके यूं सुकून.

0: हाँ थैंक यू,
1: ओके वेरी नाइस. और कुछ कहना है?
0: बस कुछ
1: ओके जी, और
0: लास्ट
1: ये रहा आपका गाना. सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ में टंग ट्विस्टर भी बताएंगे.

0: ओके जी, आज का टंग ट्विस्टर है बेसिक और टंग ट्विस्टर ये है कि परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई. परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, ठीक है, ये कहना है. और ये कहने की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अगला जो हमारा सेगमेंट होने वाला है जिसका नाम है बोलो तो माने. और बोलो तो माने में ये टंग ट्विस्टर आप लोग बोलेंगे, ठीक है जी. परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई.
1: किसे पता.
0: गाना गाने के साथ न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नतीजे में हिकु औरत समेत बजणा फौत थी विया, पंज खां वधीक ज़ख़्मी थिया। थारू शाह भरिसां भोगी में तेज़ तूफान सबबि घर जी भिति किरण

अफजत पली ऐं कौरत शामिल। नवाब शाह ऐं भरपासे तूफानी बरसात सबबि वण ऐं भितियूं किरण जे नतीजे में बि औरतुनि समेत 5 ॼणा फौत, 20 ज़ख़्मी। फौतुनि में अब्दुल मजीद, मोहम्मद हमीद महर, असलम पहर, मुस्तमाद खातून ऐं मुस्तमाद लाल खातून शामिल। मोरो ऐं भरपासे तूफान सबबि सोलर प्लेट्स ऐं साइड बोर्ड किरण जे नतीजे में हिकु औरत समेत 2 ॼणा फौत थी विया, 5 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। थारूशाह भरसां भोरी में तेज तूफान सबबि घर जी भिति किरण जे नतीजे में फातिमा पहर दब जी फौत थी वई। मेहर ऐं भरपासे सोलर प्लेट ऐं भिड़ियूं किरण वारनि वाकियुनि में 1 ॼणो हयाती विञाए वेठो, 9 ॼणा ज़ख़्मी थिया। राधड़ वेझो ॻोठ बालीशाह में भिति किरण ऐं सोलर प्लेट किरण सबब 1 ॼणो फौत थी वियो, 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया। रोशहरो फेरोज़ ज़िले में तूफान सबबि अंबनि जे बाग़नि खे बेवरो नुक़सान पहुतो।

अमेरिकी सदर ईरान सां ॻाल्हियूं ख़तम थियण वारनि ख़बरुनि खे ग़लत ऐं गुमराह क़दुरु करारे छॾियो। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं मुसलसल जारी आहिनि। अॼु बि ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जे नतीजे बाबति फ़िलहाल कुझु नथो चई सघां। कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मुआदे ताईं पहुचण जो वक़्तु अची वियो आहे।

इसराइल ॾखण लबनान ते हमलनि में तेज़ी आणे छॾी। रज़ाका समेत टे शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनान इख़्तियार मूजिब सलेमबार इलाइक़े में इसराइली फज़ाई हमले में हिकु रज़ाकार समेत 7 ॼणा शहीद थिया आहिनि। हमलनि जे नतीजे में केतिरियूं इमारतूं बि तबाह थी वियूं आहिनि।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुल्की सनअतकारनि ऐं सीरतकारनि जी मुलाक़ात, नए माली साल जे बजट ऐं मुआशी तरक़ीअ में तेज़ी ते मुशावरत। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त सनअतकार पाकिस्तान जा सफ़ीर दुनिया में सुञाणप आहिनि। ॾुखियुनि हालतुनि में हुकूमत जो साथ ॾियण ते संदनि थोरायता आहियूं। बजट में बि संदनि मुशावरत शामिल हूंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे।

0: परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई।
1: ये तो कर
0: तो थोड़ा सा लाउडली बोले और किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन ना आए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
1: आवाज
0: में डिस्टॉर्शन है। हेलो। ओके जी, कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी 03000113488। एक और कॉलर लेंगे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन?
2: हाफिज
0: लखमीर भाई, कैसे? ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर बोलेंगे
2: जी। परवीन ने पुरानी पेंटिंग से आगे क्या है?
0: प्यारी पेंटिंग बनाई।
2: परवीन ने पुरानी पेंटिंग से प्यारी पेंसिल बनाई। परवीन ने पुरानी पेंटिंग से प्यारी पेंसिल बनाई। परवीन ने पुरानी पेंटिंग से प्यारी पेंसिल बनाई।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, उल्टा उल्टा बोल रहे हैं आप। परवीन ने पुरानी पेंसिल से पेंटिंग बनाई। काफी अच्छा कहा आपने। और कुछ कहेंगे?
2: हमारे दोस्त है,
0: जल्दी से इंक्लूड कर लें, जल्दी जल्दी।
2: मोहम्मद ताहिर साहब, ढिल्लो साहब, शामी ढिल्लो साहब और जो सुन रहे हैं सबको सलाम।
0: ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। 03000113488। ठीक है जी, इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं टंग ट्विस्टर। परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई। नेक्स्ट कॉलर। हेलो।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। सागर भाई, सुरों में जो है ना टंग ट्विस्टर बोलना है।
3: टंग ट्विस्टर क्या है मैम?
0: परवीन ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई।
3: परवीन ने
0: पुरानी पेंसिल से
3: प्यारी पेंटिंग बनाई।
0: यस। यप।

0: Very nice, very nice. Thank you. कुछ और कहेंगे?
1: नहीं, मैं और नहीं कहूँगा.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज मैम.
0: ओके, अल्लाह हाफिज जी. थैंक यू. 03000113488.

क्या आज मां किशोर को कमेंट रीड कर रही हूँ, साथ साथ कहते हैं कि सिर्फ कल खाना खाते में ना जुबान दांतों में आ गई थी, इसलिए आज गाने में तकलीफ हो रही थी। अच्छा ये मतलब कहते हैं ये एक मिथ है कि अगर खाना खाते में जुबान या फिर आपका गाल आपके ही दांतों के बीच आ जाए ना, तो या तो कोई आपकी बुराई कर रहा होता है या कोई आपको जो है ना बुरा भला कह रहा होता है। तो ये एक मिथ है और ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता और ऐसा होता है कि नहीं होता। मेरे ख्याल से जब खाना खाते में इंसान बहुत जल्दी में हो ना, तब ऐसा होता है। मतलब जब इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगी हो ना, तो वो अपनी

0: अन अपने ही गाल भी खा जाता है तो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कभी कभार ये होता है। और मिथ से जो है ना मेरा मतलब कि इतना ज्यादा है नहीं कि शायद ऐसा होता हो, लेकिन हाँ जल्दी खाने के मामले में हो जाता होगा। इस चीज पे जो है मतलब एक लॉजिकली बात है कि ये ऐसा होता होगा, जबान या आपका गाल आपकी ही दांतों के नीचे आ जाए, ये समझ में भी आता है। लेकिन कोई आपको बुरा भला कह रहा हो और आपकी जबान आपके दांतों के बीच आ जाए, ये समझ नहीं आई आज तक बात। अब कैसे पता चलेगा कि कौन है जो ऐसा कर रहा है और उसको कैसे पता है कि हम इस वक्त खाना खा रहे हैं ये हमें क्यों नहीं पता चल पा रहा ये उन्हें क्यों चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट कॉलर इनकी लाइन पे, हेलो। वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, क्या खा के बात कर रही हो?
1: कुछ भी नहीं
0: कुछ भी नहीं, हेडफोन्स लगाए पहले तो ये बताओ।
1: नहीं हेडफोन्स नहीं लगाए।
0: हेडफोन्स नहीं लगाए, पक्की बात है? देख लो
1: जी, पक्की बात है।
0: ओके, थोड़ा सा लाउडली बात करना सरदर्द, और मुझे बताओ टंग ट्विस्टर सुनाए।
1: हाँ उसे पहले वाली जानते नहीं सुन सकी, कंस्ट्रक्टर है परवी ने अपनी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई।
0: यस,
1: तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई, तरवी ने पुरानी पेंसिल से प्यारी पेंटिंग बनाई।
0: ओके जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। और कुछ कहना है सरदर्द?
1: इस्मार किशोर भाई जरा ख्याल से क्या याद करेगी?
0: इस्मार किशोर भाई
1: मतलब ख्याल रखा करें ना, वरना गाना गाते हुए आपको तकलीफ होगी।
0: चले जी बिल्कुल, आपका मैसेज पहुंच गया, थैंक यू सो मच। अगला गाना प्ले कर रही हूँ सरदर्द, ठीक है? किसको डेडिकेट करना है?
1: मुझे।
0: हाँ अच्छा, आपको करूँ मैं? अच्छा चले, ये गाना जो है ना, दिस सॉन्ग इज गोज टू द वन एंड ओनली सरदर्द, और ये रहा गाना, सुनेंगे एंजॉय करेंगे, छोटे से कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बी और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला

लगी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपका मेरे साथ पूरी पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट्स और मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू. और साथ साथ हमें कमेंट्स रिसीव हुए हैं. अमार रमेश कुमार के कमेंट आए हैं जी, कहते हैं नमस्कार सस्त्रीयकाल जी लतीफ, थैंक यू सो मच, आपको खुश आमदीद कहेंगे हम. बरकत रमदानी जमाली बलोच हमें सुन रहे हैं. और इसके अलावा स्मार किशोर, बस यही मेरे साथ होता है और मैडम ने भी यही कहा जो आपने कहा, बिल्कुल सेम. क्या कहा था मैंने, मैं तो भूल गई किस बात पे कह रहे हैं आप, बात भी तो लिखनी थी ना. अच्छा, इसके अलावा स्मार किशोर कहते हैं सरदर जानबूझकर खुद को कोई तकलीफ में नहीं डालता, आप लोगों को मेरी बुराई करने में सवाब मिलता है तो मुझे भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि शायद इसी बहाने मेरे गुनाह धुल जाएं. लेकिन ये सिर्फ मिथ है, हम मिथ के बेस पे हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कोई हमारी बुराई कर रहा है और हमारी जबान दांतों के नीचे आ जाए. नहीं, इसमें मेरे ख्याल से इतनी कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ ही है. हाँ, ये है कि नजर इज रियल, अगर नजर लगी है और नजर से कुछ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली फिर

0: जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और हमारे पास लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं और एक खूबसूरत सा गाना जो कि इस वक्त चल रहा है. साथ में हम लास्ट एंड लकी कॉलर लेंगे और देखते हैं कि आज का लास्ट एंड लकी कॉलर हमें क्या अच्छी बात बताता है. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो मुझे लग रहा है इन्होंने कहीं और कॉल लगाई थी, गलती से मुझे लग गई है. कितनी गलत बात है. एक और ट्राई करेंगे नेक्स्ट. हेलो
1: वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: दीदार अली गलोच गाजी.
0: दीदार भाई हमें ये बताएं कि प्रोग्राम सुनते हैं?
1: दीदार नहीं भाई, दीदार अली गलोच गाजी.
0: ओके प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ जी प्रोग्राम सुनते हैं.
0: क्या नाम है इसका?
1: दीदार अली.
0: नहीं प्रोग्राम का क्या नाम है?
1: प्रोग्राम का
0: यस
1: प्रोग्राम का मुझे नहीं आता है.
0: नहीं आता, सुना होगा तो आएगा ना. अल्लाह हाफिज. वेरी बैड.

ना। और जी लास्ट में जिन लोगों के कमेंट्स आए हैं, स्मार्ट किशोर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, अगर आप ये लिखने की जगह मुझे बता देते एग्जैक्टली आपने वो वाला कमेंट जो किया था उसमें क्या लिखा था तो ये ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, अमार रमेश कुमार खत्री ने भी हमें कमेंट किया है, इसके अलावा राजा जुलकरनैन कियानी, आपके बहुत सारे कमेंट हैं और ये सारे कमेंट्स अभी तक के, और फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी अब शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक, तो सुनना मत भूलिएगा। और इस वाले प्रोग्राम में आपसे मेरी चिटचैट होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे, सुनना मत भूलिएगा। जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है और ख्वाब पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है। लेट्स नो पर थिंक हाय, दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी, खुशखबरी।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN. अब आप सुनेंगे GFM
5: नेटवर्क पर. मिट्टी के तूफान में बरसात सबब तबाही, 50 का वधी के जख्मी, कादी अमर ने भर पासे में मृत्यु ए छपरा करण सबब बिनौत समेत 5 जना हयाती विञा वेठा, 10 का वधी के जख्मी थिया. पोतन में उमेर चनेश्वर महर समाद राणी अफजल पली एक औरत शामिल. नवाशाह ए भर पासे में तूफानी बरसात सबब वण ए भित किरण के नतीजे में बिनौत समेत 5 जना फौत, 20 जख्मी. पोतन में अब्दुल मजीद मोहम्मद हमीर महर असलम पहर मुसमात खातून ए मुसमात लाल खातून शामिल. मोरो ए भर पासे तूफान सबब सोलर प्लेट्स ए साइन बोर्ड्स किरण के नतीजे में एक औरत समेत 2 जना फौती वया, 5 का वधिक जख्मी. ठारू शाह भरसा बोर्टी में तेज तूफान सबब घर की भित किरण के नतीजे में फातिमा पवर दबजी फौत थी वही. मेहर ए भर पासे सोलर प्लेट किरण सबब 1 जनो फौत थी वो, 2 जना जख्मी थे. नौशहरो फिरोज जिले में तूफान सबब अंबन के बागन के बेबर

अमेरिका जे फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर एयर बेसिस खे निशानो बणायो। ईंदड़ जवाब वधीक सख़्त हूंदो। अमेरिकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। जवाब कार्रवाई कंदी ईरानी कशम बेट में फौजी ठिकाननि खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहिन लॻा। कुवैत ते फायर कयल ॿ मिज़ाइल रस्ते में ई किरी पिया। बहरीन मथां फायर कयल टे मिज़ाइल अमेरिकी ऐं बहरीन फौज खे रहिया। अमेरिकी बहरी जहाज़नि ते टे ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया।

0: हिकु बाद फसान नौजवान जो घर मां गोली लॻल लाश थिए ॻोठ भगन उमराणी मां कश्मीर उमराणी जो लाश घर मां मिलियो। वारसनि मूजिबि नौजवान पिस्तल साफ़ करे रहियो हो त फायर थियण सबबि खेसि गोली लॻी। पुलिस चयो आहे त वाकई जो तला मिलण मां जांच शुरू करे छॾी आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज।
2: क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: जीए एफएम 88
2: सिंध की आवाज।

0: जनाब व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो आपने लाइव पोस्ट को जो है ना वो पकड़ लेना है बस पोस्ट को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए तो पोस्ट को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जरा लाइक कीजिए बहुत ज्यादा क्योंकि मैं देखती हूँ आप सिर्फ कमेंट करने में मसरूफ हो जाते हैं तो लाइक कर दिया करें ठीक है वो सिर्फ एक ही मरतबा होता है बाकी कमेंट आप बार बार कर सकते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और उसके साथ साथ बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है और खूबसूरत से प्रोग्राम है खूबसूरत बनने के लिए रेडी हो चुके हैं तो जल्दी जल्दी से आप जरा मुझे ये भी बताइए कि कहाँ कहाँ से आप हमारे साथ हैं और कहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं अगर नहीं मिल रहे तो उसका हल भी हमारे पास मौजूद है आपने क्या करना है कि आपने बस एक नंबर के ऊपर रابطہ करना होता है बस एक रابطے की दूरी है मेरी जान رابطہ अगर आप करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके सिटीज के अंदर जल्दी से अवेलेबल हो जाएंगे और رابطہ ही जनाब رابطے नंबर के लिए आपने क्या करना है आपने डायल करना है 03159905 जल्दी से ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं ठीक हो गया जल्दी से अवेलेबल कराइए अपने एरिया के अंदर और वहाँ से जाकर परचेज करते जाइए और मुझे बताएंगे क्या कभी आपने ऐसा किया है कि आपने किसी का यानी कि किसी से मुतासर होकर उसका आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जो है ना आपकी चोरी पकड़ी गई है उस इंसान के सामने और फिर आप थोड़ा सा शर्मसार हो चुके हैं कि भाई अगर हमने लगाना ही था तो इस तरह से लगाते कि अगले इंसान को पता ना चलता लेकिन बहुत मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं किसी और का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो बस अगले इंसान को पता चल जाता है मुझसे तो भाई कोई किसी की बात छुपती नहीं है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे ना सारी चीजें मतलब मैं सारी चीजों को स्कैन कर लेती हूँ मेरी इस आदत से सारे घर वाले परेशान है कि इसको पता कैसे चलता है भाई मेरी एक चीज अगर इधर से उधर भी रखी जाए तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर जो ना वो स्कैनर लगा हुआ है तो ऐसा सीन मेरे साथ तो बहुत मरतबा हो जाता है मुझे पता चल जाता है कि मेरी चीजों के साथ ना छेड़खानी की गई है और मैं फिर पता लगा लेती हूँ कि क्या हुआ है आखिर तो आप भी मुझे बताएंगे कि आगे साथ भी कभी ऐसा हुआ है और अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए मेरी बातें भाई इतनी ज्यादा आज बढ़ गई है कि टाइम हो चुका है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो आपने कहीं नहीं जाना आप हमारे साथ मौजूद रहिए प्रोग्राम में आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक आप सुनते रहिए इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगा दी जाइए खूबसूरत होती जाइए
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GAFM 88 की आवाज
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ़ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: हाँ जी, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जा रहे हैं, और क्यों ना इस्तेमाल करें कि आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जो आ चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे तो आपने व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि आपको नाइट क्रीम मिल रही है, फेयरनेस क्रीम मिल रही है, साबुन मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, एक्नी ट्यूब मिल रहा है, लोशन मिल रहा है, हेयर रिमूवल लोशन मिल रहा है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह का प्रोडक्ट मौजूद है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए। एक और मजे की बात आप लोगों को बताती चलूं कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स फुल नेचुरल अजा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर चुका है, हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। तो जल्दी से आप भी इस्तेमाल कीजिए, कहीं देर ना हो जाए और आपके एरिया में मिलना बंद हो जाए। भाई हम ये चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए आपने नंबर्स के ऊपर रابطہ करना है, स्टार्ट करना है। रابطے जितने भी आप बढ़ाएंगे उतना ही आप लोगों का फायदा होगा, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि अगर आप जितना भी रابطہ करेंगे नंबर के ऊपर तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर उतना जल्दी इतना तेजी से अवेलेबल होते जाएंगे। तो डायल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल कीजिए, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए। और यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी स्किन को फ्रेश बनाती है, फेयर बनाती है, ग्लोइंग बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है, क्योंकि इसके अंदर एड है जनाब मिल्क, एलोवेरा और एवोकाडो। ये तीनों चीजें मिलकर आप लोगों के लिए जो है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम बनी है, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन को ब्यूटीफुल बना देगी। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, रात के टाइम इस्तेमाल कीजिए, लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए मजे कीजिए। उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे जी व्हाइट एज लवली क्रीम, और व्हाइट एज लवली क्रीम तो ये आप लोगों के लिए है, ये सारे लोगों के लिए, हर तरह का इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है, उम्र चाहे कितनी भी हो हर कोई इस्तेमाल करे, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। और ये एक फेयरनेस क्रीम है, रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन से तैयार की गई है, इसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी स्किन के अंदर वाइटामिन की कमी हो चुकी है, तो वो जो है ना वाइटामिन की कमी व्हाइट एज लवली क्रीम पूरी कर देगी। और जनाब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर आप लोगों को सनस्क्रीन भी मिल रही है, यानी कि अगर आपको फेयरनेस चाहिए लेकिन सनस्क्रीन आप अलग से लगाते हैं तो उसका खर्चा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। और ये तमाम तर चीजें जो है ना आप लोगों को एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिल रही है, जिसका नाम है व्हाइट एज लवली क्रीम। तो व्हाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल कीजिए और खुद को लवली लवली बनाते रहिए। और उसके अलावा अगर आप एक्नी से शदीद वाला परेशान है तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब आपके लिए मौजूद है। डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है, डॉक्टर की तस्दीक शुदा ये प्रोडक्ट्स हैं जनाब, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो जनाब ये आपके एक्नी से फाइट करता है, आपके चेहरे पर जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हों, व्हाइट हेड्स हों, एक्नी मार्क्स हों, या फिर निशानात कुछ ऐसे जो कि आप लोगों को चोट से लगे हैं, जलने का निशान है, ये तमाम निशानात भी खत्म हो जाते हैं गारंटी के साथ, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। और डॉक्टर पिंपल का जो एंटी एक्नी ट्यूब है ना, वैसे लगाने के तरीकेकार क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूं। तो जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, और रात के टाइम आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आप अपना फेस वॉश कीजिएगा, या तो आप व्हाइट एज ब्यूटी साबुन लगाएं तो साबुन लगाइएगा, फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो फेस वॉश लगाएंगे, अच्छे से अपना फेस क्लीन कीजिए, हाथों को अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर पिंपल का ट्यूब जो है ना वो अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, जहां पर दाग है जो कि आप रिमूव करना है, आप लोगों को फर्क नजर जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप व्हाइट कर सकते हैं लेकिन फेस वॉश लाजमी किया करें, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम

ओगरी चाचा खालिद कहते परफ्यूम लगा लेते हैं एक दूसरे का सिजो ये टॉपिक आंसर। परफ्यूम तो एक नॉर्मल सी चीज है, वो तो हर कोई लगाता है मुझे ये लगता है। और दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहती कैसी हो चंदा। मैं ठीक हूँ कहती, सोते हुए आपका इंतजार कर रही थी, ऐसा ना हो कि कहीं तुम सो ही जाओ तो आप बैठ कर मेरा इंतजार किया करें ठीक है क्योंकि बड़ी नाजुक सूरत हाल है, समझ गए होंगे। अच्छा नूर हुसैन तुनियो भाई आपके यहाँ नेटवर्क का मसला है, चलें देखते हैं कोई हल निकालते हैं जी। और उनका अलावा हैं जी एस एन आर बाणी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा चाहला, उम्मीद त खुश हूं, शाद हूं, आबाद हूं, न याद हूं, नई विसरंदो, हाओ बिल्कुल सही था चो। और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक कड़ी कड़ी शैम्पू यूज कंदो आया पर हुन जी खुशबू बुधाए छडियो त मो हुन खे हुन जी शे यूज कई आए। हा बाबा यो खुशबू जेका है ना या डाडो कम खराब कंदी चोरी जेका न पकड़ी वेंदी आहे ईअं न। अच्छा दर्द दिल कहती है मैं और मेरी सिस अलीजा शो सुन रही है तुम्हारा शो और गर्मी को एंजॉय करे। वैसे रात बारिश कहाँ कहाँ पर हुई थी बताइए जरा।

एसएम कहते हैं टॉपिक बुधण का पोए असा एंट्री मारिंदा हूं शो में खबर पवंदी याद है शो ना करी भाई वैसे सही बात है ऐसे ही किया करे अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करिए आप जल्दी जल्दी से टाइम जो है ना वो बड़ा तेजी से गुजरता जाता है और नोटिस इंतनियो भाई बहुत शुक्रिया जी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं मुझे बताइए

अच्छा आदिल ठीक है जी, आपका गाना लगाने की कोशिश करेंगे। किशोर भाई कहते हैं अदी कल लास्ट लिंक में मुख्य निंड अची वही, मुख्य बिल्कुल अंदाज हो न गाल जो जदी तवाजा कमेंट ना आया तो मैं समझी वया छ अदो कारे हली वयो आ पर निंड में हली वई या खबर को न हुई। अच्छा स्मार्टू गोपांग हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी, ठीक ठाक। अच्छा धरती दिल कहती वैसे चंदा बारिश हुई है क्या रात को तुम्हारी तरफ? हाँ जी कुछ ज्यादा ही हो गई। ओके जी बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना, एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम आप लोगों के साथ साथ इंजॉय करने वाले हैं। और आप लोग मुझे बताइए जरा कि आप लोगों की हाँ क्या मिल रहे हैं वाइट एश प्योरी प्रोडक्ट्स, अगर मिल रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हुए हैं, अगर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए तो आप जल्दी से अवेलेबल कराइए। आप डायल कीजिए 03 15 799 0595।

आप जब आप व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होना स्टार्ट हो जाती है जब आप इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ना जो कि आप लोगों की खूबसूरती को भी बढ़ाए और साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करे तो ये व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानब आप मूव कर सकते हैं क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचेंगे भाई हम तो नाइट क्रीम नहीं लगाते तो हम क्या करें भाई आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद है। आप ये सोचेंगे हम तो साबुन नहीं लगाते फेस वॉश लगाते तो आपके लिए व्हाइट एज का फेस वॉश मौजूद है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो साबुन लगाते तो साबुन भी मौजूद है और अगर आपके पास एक नहीं आ चुके हैं बहुत ज्यादा तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक नहीं ट्यूब भी मौजूद है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हर तरह का प्रोडक्ट है बस आप दिल वडी कयो तवा लगाने स्टार्ट कयो ठीक है ना। तो व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स आप लोगों को हर जगह और हर तरफ मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे तो आप मुझे बताइए ना ताकि हम अवेलेबल करा सकें।

0: वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम करते हैं प्यारे भाईजान को और उसके साथ साथ हैं जी हिदायतुल्लाह कहते हैं गर्मी की वजह से, हाँ जी गर्मी की वजह से सर पर कपड़ा ओढ़े जा रहा था। एक आंटी ने बोला परवीन तुम कब आई मायके से, तो आपने भी बस शगल मेला लगा लेना था। अच्छा उन्होंने कहा अलावा हजार खान जो तो ही भाई भी हमारे साथ मौजूद है, साला हजार भा तो जो ठीक आयो न। अनवर भाई भी हमारे साथ है, अनवर भाई क्या कहते हैं?
1: Toujours pas retrouvé, elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler.
0: अच्छा चौथा जिंदगी एक सफर आहे, हलंदा वणू था कदे खिलंदा कदे चुप थी रहंदा वणू था, कुछ मानू दिल में घर करे वेंदा आहिन ऐ कुछ रस्तन में ही विसरी वेंदा आहिन, पर सच्चो साथ वो हुंदो आहे जेको हर हाल में गड हुंदो आहे। इहा तो सही गाल आहे। कश्यप भी हमारे साथ मौजूद है, हेलो कश्यप। अली अकबर बरोही भाई हमें सुन रहे हैं, अली अकबर बरोही भाई आपका भी वेलकम करते हैं जी। और एसन कहते हैं अज मुझी मोबाइल जी चार्जिंग खत्म आ, ता ब्रेक वठो आ मोबाइल चार्ज में लगाया। चलो ठीक है ठीक है, यो बिल्कुल सही है। और ये जी सुफियान अहमद भी हमारे साथ मौजूद है, सुफियान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक मजे में। अरे सुफियान कह रहे ये सॉन्ग कहाँ से निकाला है? यूट्यूब से। मैं ये सोच रही कि अगर यूट्यूब ना होता तो मेरी जिंदगी कैसे होती। ओके जी हजार भाई कहते हैं मैं आपका शो ख्वाब में एंजॉय कर रहा था, अचानक आंख खुली तो अदी आप सच्ची में आ गई थी। चलें ये भी अच्छी बात है, आपके ख्वाबों में भी खैर से मेरा प्रोग्राम आ रहा है। वैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बताइए जरा मुझे ताकि ये पता चले कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं वो किसी काम तो आ रहे हैं। अच्छा कम्बर में भी बारिश हुई थी, चलें ये अच्छी बात है। और मौसम जो है ना वो थोड़ा सा कूल कूल हो चुका है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा सा, यानी थोड़ो फर्क पयो आहे। सो बिल्कुल तव्हां सां गॾु मौजूद आहे, असां तव्हां सां गॾु मौजूद पूरी पूरी टे बजे ताईं, तव्हांजो असांजो साथ रहण वारो आहे सोना। सो तव्हां हिते ॿुधायो किथां खां ज्वाइन कयो पिया, कहिड़े रस्ते सां गॾु मौजूद आहियो, लॻायो पिया कोन वाइट एज जा प्रोडक्ट्स। टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक वठूं था, उन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा सफ़ा पितकड़ा, त तव्हां काॾे न वञो, हिते वेठा हुजो, मां उहीं वञी उहीं मोटां थी। सो स्टे ट्यून, stay connected and keep listening White Age Anti Skin Beauty Show sponsored by White Age Beauty Products Anti Skin Beauty Products। lagate jaiye khoobsurat hote jaiye, khoobsurti ko hello hi boliye।

सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में मिटीअ जे तूफ़ान ऐं बरसाति सबबि तबाही, मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि ऐं हादसनि में 15 ॼणा फौत, 50 खां वधीक ज़ख़्मी। गाज़ी आबाद ऐं भर पासे भितियूं ऐं छपरा किरण सबबि बिनौत समेत 5 ॼणा हयाती विञाए वेठा, 10 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। पोतनि में उमेर, चनेसर महर, मुसमात राणी, अफ़ज़ल पली ऐं हिकु औरत शामिल। नवाबशाह भर पासे तूफ़ानी बरसाति सबबि

थी विया पंज खां वधीक ज़ख़्मी थिया। खारुशा भरिसां घोटी में तेज़ तूफान सबबि घर जी भिति किरण जे नतीजे में फातिमा पवर दॿिजी फौत थी वई। मेहर ऐं भर पासे सोलर प्लेट ऐं बिजू किरण वारनि वाकियनि में हिकु ॼणो हयाती विञाए वेठो, नव ॼणा ज़ख़्मी थिया। राधन वेझो ॻोठ बालेशाह में भिति किरण ऐं सोलर प्लेट किरण सबबि हिकु ॼणो फौत थी वियो, ॿ ॼणा ज़ख़्मी थिया। नौशहरो फेरोज़ ज़िले में तूफान सबबि अंबनि जे बाग़नि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो। तेज़ तूफान ऐं बरसातुनि बाद लाड़काणो समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जी बंद थियल बिजली अञा बहाल न थी। सख़्त गर्मीअ सबबि रहवासी सख़्त परेशान। सेप्को बंद थियल 46 ग्रिड स्टेशन मां 27 खे बहाल करण जी दावा करे छॾी। सेप्को चीफ चयो आहे त बिजली फराहम कंदड़ टावर किरण सबबि ग्रिड स्टेशन बंदि थियूं आहिनि। बंद थियल 46 ग्रिड स्टेशन मां 27 खे बहाल कयो आहे। ॿियनि जी बहाली जो कम जारी आहे। बिजली जी मुकमल बहालीअ में 72 कलाक लॻी सघनि था। अमेरिका ऐं ईरान जा हिकु भेरो ॿीहर हिकु ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। ॿिन्ही मुल्कनि जा हिकु ॿिए ते अगराई ऐं जंगबंदी वाइदे जी भञकड़ी करण जा इल्ज़ाम। ईरानी पासदारनि इंकलाब जी कुवैत ऐं बहरीन में अमेरिकी फौजी अॾनि ऐं सामूंडी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इंकलाब चयो आहे त आबनाए हरमूज़ में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले जे जवाब में कार्रवाई कई। अमेरिका जी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर ऐं एयरबेसिस खे निशानो बणायो। ईंदड़ जवाब वधीक सख़्त हूंदो। अमेरिकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। जवाबी कार्रवाई कंदे ईरानी कशम बेट में फौजी ठिकाणनि खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहे लॻा। कुवैत ते फायर कयल 2 मिज़ाइल रस्ते में ई किरी पिया। बहरीन मथां फायर कयल 3 मिज़ाइल अमेरिकी ऐं बहरीनी फौज किराया। अमेरिकी बहरी जहाज़नि ते 3 ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया।

कुवैत पारां मुल्कियतनि में दाख़िल थियल मिज़ाइल ऐं ड्रोन खे नाकारा बणाइण जी दावा, हमलनि बाद कुवैत जे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते एमरजेंसी लागू, नुक़सान थियण जी बि तस्दीक। कुवैत जी दिफ़ा वारी वज़ारत मूजिबि दुश्मन जे मिज़ाइल ऐं ड्रोन खे दिफ़ाई निज़ाम नाकारा बणायो हो। कुवैती सिविल एविएशन अथॉरिटी मूजिबि ईरानी मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमलनि बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते हंगामी हालतूं लागू कयूं वियूं आहिनि। एयरपोर्ट खे नुक़सान पहुतो आहे, उॾामूं ॿियनि एयरपोर्ट्स ॾांहुं मुंतक़िल कयूं पियूं वञनि।

अमेरिकी सदर ईरान सां ॻाल्हियूं ख़तम थियण वारनि ख़बरुनि खे ग़लति ऐं गुमराह कंदड़ करार ॾेई छॾियो। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं मुसलसल जारी आहिनि। अॼु बि ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जे नतीजे बाबति फ़िलहाल कुझु नथो चई सघां। कंहिं न कंहिं तरीक़े सां वाइदे ताईं पहुचण जो वक़्तु अची वियो आहे।

0: ईरान खां डील जे नाले ते खैरात छोकरी रहा आयो। डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर जा सेनेट कमेटी में अमेरिकी परदे वजीर मार्को रूबियो खां सख सवाल। सेनेटर कोरी बुकर चयो त अमेरिका खे छो ईरान सां वाइदे तरफ वञी रहियो आहे जेको माज़ीअ में रद्द करे चुको आहे। वॉशिंगटन आख़िर दबाव जो शिकार छो आहे? परदे वज़ीर मार्को रूबियो चयो त अमेरिका ईरान खां खैरात न घुरी रहियो आहे। ॾुखियो सफारती मरहलो आहे, ॻाल्हियूं जज़्बात ते न पर टेक्निकल बुनियादनि ते थींदियूं आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: और संगेमील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

करते हैं जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ती है, तो उस बात के ऊपर जरा हम आते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस्तेमाल नहीं करा है, तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन चीजों को जरा आप सबसे पहले अपने दिमाग में रखा करें कि ये जो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताती हूँ ना, ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट्स हैं और ये ऑल स्किन टाइप के जो ना यूज करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। ऑल स्किन टाइप वाले लोग इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर जो है ना, जब भी मैं आप लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, तो मेरी एक ये दिली ख्वाहिश होती है कि उस प्रोडक्ट से आप लोगों को बहुत अच्छा जो है ना वो रिजल्ट मिले, बहुत अच्छा आप लोगों के चेहरे पर निखार आए। तो अभी जो है मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताना जो है ना, ये उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई अपनी स्किन की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, जिनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है और वो प्रोडक्ट लगाने से पहले जो है ना वो हजार बार सोच रहे होते हैं।

बोलते बोलते जब हम बात है तो जब आप डेली स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के लिए जो कि भाई आपकी स्किन थोड़ी सी खराब हो जाती है, थोड़े कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसा किया करें कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने लगे तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा है और डॉक्टर से फुल इसका अप्रूवल मिला हुआ है, तभी आपकी जानिब जो है इस प्रोडक्ट को भेजा गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स मौजूद है और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है, यानी कि फुल तमाम की जगह ने लगाने का पोई अमीरी वारो एहसास थी तो तमाम वाकई कोई अमीरन वारो प्रोडक्ट लगायो पया। तो तने जी जेको क्वालिटी आहे डाडी भली आहे, जदे तमाम इस्तेमाल कना तो थिक वीआईपी जेको ने जो फॉर्म आहे आई तमाम जी स्किन ते जदे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई वेंदी त आए हाय तमाम के डाडो मजो अची वेदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका ये तमाम जी खूबसूरती के वधाईंदी आहे, तमाम जे चेहरे जा जेके डार्क सर्कल्स आइन ओहे रिमूव कंदी आ, डार्क जेके भी चीजू आइन यानी कि तमाम जी स्किन जे इत्या हल्का पेजी वया आइन कारण निशान थी वया आइन या फिर तमाम जी जका स्किन आ बेरोनक लगे थी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल का पोई तमाजी स्किन जका ना सोनी सोनी दिखार भी तमाजी चेहरे जा जके निशान आदन सब खत्म थी वेना, तमाजी स्किन जा हल्का खत्म थी वेना आई तमाजी स्किन ते निखार अचन शुरू थी वेंदो आ। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका वाइटामिन ई बीड्स आई माइक्रो बीड्स के मिलाए करे तैयार कई वई है, तो जका पाकिस्तान में डिठो वने ना तो ट्रे चार प्रोडक्ट कड़ा जिन जे अंदर वाइटामिन ई बीड्स शामिल आ, वाइटामिन ई बीड्स के ना तमाजी स्किन ला डाडा जरूरी हुंदा है, उन जो जको मतलब उन जे अंदर जके प्रॉपर्टीज हुंदे ना वो एड़ी हुंदे जे तमाजी स्किन जे जदे अंदर वेंदी वंदे तमाजी स्किन के इलाही सारो फायदो पहुचंदो आ। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर भी वाइटामिन ई बीड्स मौजूद आहिन, तमा इस्तेमाल करे दिसो तमा के मजो अची वेंदो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा कर तमा के डी स्किन फेस वॉश भी मिले पयो। बिल्कुल जनाब, सो डी स्किन फेस वॉश की अगर मां गाल कयां तो डी स्किन फेस वॉश जो है तवा जी खूबसूरती के लिए आए आई हर स्किन के मुताबिक तैयार कयो वयो आए आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना यो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार कयो वयो आए जो तवा जी स्किन के सफा या गोरो बनाईंदो आए आई तवा जी स्किन के हाइड्रेट रखंदो आए आई तवा जी स्किन हमेशा ग्लो कंदी रहंदी आए। सो डी स्किन फेस वॉश से तवा पांजो फेस वॉश कंदा डी में तवा ब टे दफा करे सगो था, रात जो सुमो तो तवा लाजमी पांजो फेस वॉश करे सुमो डी स्किन फेस वॉश सा उन खा पोई तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका पाने चेहरे थे अप्लाई कयो, अप्लाई आराम सा कयो, प्यार सा कयो, तसल्ली सा कयो, सुकून सा कयो, जदे भी तमा कोई भी प्रोडक्ट

बाबा माण्हुनि में जेको आहे न तव्हां अगरि क़दुरु ॻोल्हियो पिया त माण्हू तव्हांजो क़दुरु कंदा त तव्हां सफ़ा ग़लति आहियो। माण्हू तव्हांजो क़दुरु कॾहिं बि न कंदा। तव्हां पंहिंजो क़दुरु बसि पाण करणु स्टार्ट कयो।

अच्छा ऐसे कहते हैं टॉपिक ना नको ऐसा नायो लगाईंदा बेंजा प्रोडक्ट अल्लाह जाई बुदा अच्छा सुफियान कहते सर तेज हवा चली थी चली अच्छी बात है और किशोर भाई कहते मैं समझा तुम्हारा शो लाश है लाश नहीं है बाबा लश है लश लाश मेरा शो नहीं है मेरे को थका थका नहीं पसंद थके थके लोग भी नहीं पसंद थकी थकी बातें भी नहीं पसंद तो इसीलिए हम जिंदा कौम है जी मानो की लगी तो बाबा तहां जिंदा आयो छा ये मरलन वाली जिंदगी था गुजार

अच्छा इन गाने की फरमाइश इमरान अली बिरोही भा असां खे कई हुई. इमरान भा तव्हांजो मैसेज जेसि ताईं पढ़ां, ही गानो तव्हां जे नाले अथव, सही आहे? हा साईं, हा साईं, ॾाढो आहे, ॾाढो आहे, मञी वियासीं. और नूर सिंह तुनियो भा, तव्हां राति 3 बजे असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा, बिल्कुल जी ॿुधजो, ॿुधजो शौक़ सां ॿुधजो. दर्द दिल कहती है कि नहीं मुझे नींद नहीं आ गई, नींद को इजाज़त नहीं है, और हमारी तरफ तो मिट्टी आई थी हवा के साथ, बारिश तो नहीं थी. मिट्टी तो खैर हवा के साथ ही आती है, बाकी हमारे यहाँ बारिश भी आई थी. और उसके अलावा हेंजी ये अकबर अली अकबर बिरोही भाई तव्हांजो मोहबतू आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पिया. शादी वारो गानो मां कोशिश कयां थी तव्हांखे ॿुधायूं, सही आहे?

चीज हथ अची वेंदी आहे ऐं इस्तेमाल करे छॾींदो आहियां, मूंखे कोई बि कुझु बि नाहे चवंदो। अलाह सिकी लधायो मन सही आहे। वैसे किशोर भाई अॼु त घुराइण ते बि नदड़ी कोन आई आहे, अलाए किथे आहे नदड़ी। मुलाई मुजाहिद बोज़दार हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है। काफी दिनों के बाद आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, सो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है।

चार्जर तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595. आदल वो अभी तक हुए नहीं ना, और मुझे लगता भी नहीं कि शायद कभी होंगे.

0: आज किशोर भाई कहते हैं कि हम स्कूल में फेमस नहीं थे, स्कूल हमारी वजह से फेमस, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी वजह से स्कूल फेमस होता है।
1: पाई तो
0: अच्छा, तो ऐसे कहते हैं जो गाना बुधाए जो बिल्कुल मां हलाइण जी कोशिश कयां थी, ठीक है।

ते ॾाढो भलो गानो खेड़ तव्हां एंजॉय कयो पिया. टाइम थियो आहे वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, हुन खां पोइ वापसी जल्दी तव्हां मोटी चूं था. तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो. मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एज एंड द स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड द स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए.

0: GA FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म लिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GA FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना है। इस गाने का मतलब ये है कि हमसे मत पूछो बस दूर रहो और दूर रहो। इसी के साथ साथ जनाब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तआवन से। तो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताएं तो जरा, पता तो चले। एडा ये मीसना छो थी वया, अॼुकल्ह कुझु बि ॿुधायो नथा, शेयर ई नथा कयो। शेयरिंग इज केयरिंग हूंदी अथव, ॿुधायो मूंखे कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पियो आहे। उन सां गॾो गॾु अगरि तव्हां खूबसूरती जी तलाश में आहियो, तव्हांजी तलाश ख़तम थी वई आहे, त हाणे मार्केट में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अची विया आहिनि। अगर तुम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगायो पया तो उनमें तुम व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मिले थी, व्हाइट एश लवली क्रीम मिले थी, व्हाइट एश ब्यूटी सोप मिले थो, व्हाइट एश फेस वॉश मिले थो, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिले थो। ही सब प्रोडक्ट तुम इजीली लगाए सको था। उनका अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारे लिए मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है तुम्हारे लिए तैयार कई वही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम डी स्किन फेस वॉश भी मिले पो, सो ही सब प्रोडक्ट तुम इस्तेमाल करो, तुम्हारी खूबसूरती बदंदी और तुम सोना सोना थी वा। सो डायल कयो 03-15-799-95। अरे भाई पागलपंती भी जरूरी है जिंदगी में, पागलपंती किया करे।

तो मुझे नालो लिखो आज हथ से ढो भलो गानों को बुध पाया उन अलावा कश्यप शादी से भी अस चलो ठीक है तुम्हारे कजिन की शादी है उनके लिए गानो हलाइंदी और कहीं बाजी ही अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है और ये हमारे साथ मीरपुर खास अब्दुल्ला महर वालेकुम असलम बाजी वाइट एज

प्यूरी क्रीम जबरदस्त आहे. आए हाय दिल ठारे छॾींदा जॾहिं तव्हां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियो. उमर कोट से वफ़ा, दो दो खान सोलंगी है, कमाल दीन सोलंगी भी आपके साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया, दोनों भाइयों को वेलकम करते हैं. गोठ धनी बख्श अहमदानी से मंठार अली अहमदानी हमारे साथ है. नंडो बाकीर अली अहमदानी भी है, जाकिर अली अहमदानी और सदरा मुस्कान. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. और इमरान अली बिरोई भाई कहते बाजी ही वारो गनो त हलाईंदा हथ मथे क्या सी डाढो आ हली वियो हली वियो. और हे जी बाजी टॉपिक का जवाब है जी, एक दिन में अपने आप ही जान की टूथ पेस्ट को चुराया था, चुराया था, लगाया था, क्या किया था बताइए जरा. लगाने की बात और चुराने की बात थोड़ी सी जरा समझ नहीं आती. और कश्यप कहती है सिडो हमारे पास रात बहुत तूफान भी सकरंड में. अच्छा जी, अच्छा चलिए एंजॉय करें बचा. अच्छा मेहंदी सां नालो लिखण वारो इहो जेको सीन आहे मूंखे समझ में न ईंदो, इहो छा आहे मतिलब. आप मेरे SMS सही से रीड नहीं करती हैं, कोई नाराज़गी है क्या भला आपकी मुझसे तो बताएं जरा. नहीं नहीं नहीं, नाराज़गी भला कैसी हो सकती है, और नाराज में तो परियों से बिल्कुल भी नहीं होती. और ये हम यहाँ पर गाना सुनेंगे जी, सहरो सहरो आहे ॾाढो भलो. इन गाने खे ॿुधंदासीं जेको असां कश्यप जे कज़न खे डेडिकेट कंदासीं, उन जी शादी आहे छो त शादी जो घर आ, शादी थे पई तो तवा के इस्तेमाल करना पंदा जनाब हाई टेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. तवा वनो मार्केट अगर खरीदारी करना तो वाइट टेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स वठी अजो, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जरूर वठी अजो. ठीक है कश्यप.

अच्छा जी, चाचा खालिद कहते हैं मिले तो लगायो नी वाइट एश लवली क्रीम नथी मिले अन्या ताई तां वट तां के जको नंबर बुदा दन ते राप्तो कयो ना बाबा राप्तो कना त पोई त मिलंदी नी अगर जिते जिते अवेलेबल ना तन मानु जलाए सबनी जलाई या आई गुजारिश मुजी त बाबा तमाने नंबर ते राप्तो करी वठो राप्तो करना का पोनन के बुधायो त किथे किथे जरूरत आ है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जी दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी जे हु अवेलेबल करा सकन उनन की केडी खबर त किथे किथे नथा मिलन अन्या ताई तो तमा थोड़ो उनन जी मदद कयो नंबर डायल कयो ए नंबर आ है 03 15 799 0595 ये नंबर तुम डायल कर उनके बुधायो बाबा तो अस इस्तेमाल करना चाहूँ था वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराई वो

अच्छा दादला कहते हैं सदरा ये लास्ट लिंक सबसे कुछ थोड़ा बड़ा लगता है मुझे ऐसा क्यों बोला भागन जी गाल आहे तुमचा नथी सग्या सीन।

अॼु गाना रहिजी विया न प्रोग्राम में त उहे गाना मां सुभाणे अची तव्हां जा हलाईंदमि ठीकु आहे तव्हां नाराज़ न थीजो मूंखां और छोनी कहती आप वैसे कराची की मौसम बहुत प्यारी थी आपने बहुत ज्यादा इंजॉय किया और चले माशाल्लाह अच्छी बात है इंजॉय करिए जिंदगी को और सायमा कहती है हाथ पे मेहंदी से नेम बताओ सही गलत है या मेरे ख्याल से गलत है ठीक है चाचा जो गाना बिल्कुल है तो वैसे मेहंदी से नालो जो ना मुझे थोड़ा अजीब लग ओल्ड फैशन लग रहा ओल्ड फैशन असा ठहरिया थी बाबा जैन जी बार जेंजी जी के ना कुछ अलग करने की कोशिश करना आहिनि समझो था इहो हाणे पुराणो ट्रेंड थी वियो को नओ ट्रेंड ॻोल्हींदासीं हाणे त छा करणु घुर्जे असांखे आई एम सफ़ा ख़तम थी

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मिटीअ जे तूफ़ान ऐं बरसाति सबब तबाही मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि हादसनि में 16 ॼणा फौत 50 खां वधीक ज़ख़्मी गाज़ी अहमद ऐं भरपासे भितियूं ऐं छपरा किरण सबब बिनौतुनि समेत 5 ॼणा हयाती विञाए वेठा 10 खां वधीक ज़ख़्मी थिया पोतनि में उमेर चनेसर महर मुसमात राणी अफ़ज़ल फली ऐं हिकु औरत शामिल नवाबशाह ऐं भरपासे तूफ़ानी बरसाति सबब वण ऐं भितियूं किरण जे नतीजे में बिनौतुनि समेत 5 ॼणा फौत 20 ज़ख़्मी पोतनि में अब्दुल मजीद मोहम्मद हमीर महर असलम पवर मुसमात खातून ऐं मुसमात लाल खातून शामिल मोरो ऐं भरपासे तूफान सबब सोलर प्लेट्स ऐं साइन बोर्ड्स किरण जे नतीजे में हिकु औरत समेत 2 ॼणा फौत थिया 5 खां वधीक ज़ख़्मी थारूशाहबर सां भोटी में तेज़ तूफान सबब घर जी भिति किरण जे नतीजे में फातिमा पवर दॿिजी फौत थी वई मेहर ऐं केन शाह में सोलर प्लेट्स ऐं भितियूं किरण वारनि वाकियनि में 2 ॼणा फौत ऐं 8 ॼणा ज़ख़्मी थिया राधन वेझो ॻोठ भाउ खे वॾो नुक़सान पहुतो तेज तूफान लारकलिफ ज़िले जी बंद थियल बिजली अञा बहाल न थी सख़्त गर्मी सबब रहवासी परेशानियुनि खे मोरियण लॻा सेप्को बंद थियल स्टेशन मां 27 खे बहाल करण जी दावा करे सेप्को चीफ चयो आहे त बिजली फराहम कंदड़ टावर किरण सबब ग्रिड स्टेशन बंदि थियो आहिनि बंद थियल 46 ग्रिड स्टेशन मां 27 खे बहाल कयो आहे ॿियनि जी बहालीअ जो कम जारी आहे बिजली जी मुकमल बहालीअ में 72 कलाक लॻी सघनि था अमेरिका ऐं ईरान जा हिकु भेरो ॿीहर हिकु ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला ॿिन्ही मुल्कनि जा हिकु ॿिए ते अग्राही ऐं जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी करण जा इल्ज़ाम ईरानी बाज़ार ऐं इनकलाब जी कुवैत ऐं बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अॾनि सामूंडी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा बाज़ार ऐं इनकलाब चयो आहे त आबला हरमूज़ में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले जे जवाब में कार्रवाई कई अमेरिका जी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स ऐं एयर बेसिस खे निशानो बणायो ईंदड़ जवाब वधीक सख़्त हूंदो अमेरिकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि जवाबी कार्रवाई कंदे ईरानी कशन बेट में फ़ौजी ठिकाणनि खे निशानो बणायो ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहिनि लॻा कुवैत ते फायर कयल 2 मिज़ाइल रस्ते में ई किरी पिया बहरीन मथां फायर कयल 3 मिज़ाइल अमेरिकी ऐं बहरीनी फ़ौज खे रहिया अमेरिकी बहरी जहाज़नि ते 3 ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया

0: गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
3: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अब हाजी बारह जी।
5: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ, आवाज की डोर से बंधा हुआ।
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हम नवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शायद कंहिं वक़्तु ईरानी सुप्रीम लीडर सां मुलाक़ात कयां। ईरान तकरार ख़तम थींदो त तेल जूं क़ीमतूं बि घटिजी वेंदियूं। ईरान में हिन वक़्तु ज़मीनी फ़ौज मोकिलण जी ज़रूरत नाहे। नेतन्याहू जे लबनान ते लॻातार हमलनि सबबि

वातावरण इनकलाब चवाए था अपना अर्मुज में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले के जवाब में कार्रवाई कई अमेरिका के फिफ्थ फ्लीट क्वार्टर्स एयरबेसिस के निशानों बढ़ाया इंदर जवाब सख्त होंद अमेरिकी सेंटकॉम चवाए तो ईरान जहां बैलिस्टिक मिजाइल में ड्रोन हमला नाकाम बनाया वाया जवाबी कार्रवाई कदे ईरानी कश्म भेट में फौजी ठिकानों के निशानों बढ़ाया ईरानी मिजाइल निशाने ते नाहन लगा कुवैत ते फायर कयल ब मिजाइल रस्ते में किरी पया बहरन मथा फायर कयल टे मिजाइल अमेरिकी ए बहरनी फौज किराया अमेरिकी बहरी जहाजन ते टे ड्रोन हमला नाकाम बनाया वया। कुवैत पारा मुल्कियतुनि में दाख़िल थियल मिज़ाइल ऐं ड्रोन खे नाकारा बणाइण जी

हमने बात को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हमने में कजन के माजन केतरा जख्मी थे तस्दीक कुवैती परे वजारत हमलन की मजम्मत कदे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ए सिविल आबादी के निशान बनाया वो आम मदन से गड कुछ सफारती मिशन के भी नुकसान पहुंतो है। ईरानी हमला इतने के अमन इस्तेकाम के नुकसान पहुंचाए रहा है। वह आलमी कानून मूजिब जवाब देने जो हक रखे तो ईरान कुवैत ए बहरीन की क्यादत के हमलन जो जिम्मेवार करार दे छो। ईरानी पदे वजारत मूजिब दुश्मन के तहरान खिलाफ कार्रवाई के लिए सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देने के जारी समझू था जिनको भरपूर जवाब दिनों वो पारिसी मुल्क ईरान खिलाफ हमलन के लिए पैंती सरजमीन इस्तेमाल थे रोकन। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती बाबत तर्जमान इब्राहिम रज़ाई अमेरिकी सिफारतकारी वाली बोली न पर मिजाज वाली जबान समझन था। वो ईरान से मुआदे तरफ वही रो है जो माजी में रद्द कर चुको है। वॉशिंगटन आखिर दबाव का छो है परे वजीर मार्को रूबियो अमेरिका ईरान का खैरात न घुरी रो है दुखियो सिफारती मरहलो है गाल जज्बात ते न पर टेक्निकल बुनियादन पे थन्द वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुल्की सनतकार सीरपकार की मुलाकात नए माली साल की बजट ए मुआशी तरक्की में तेजी से मुशावरत। शहबाज शरीफ चाहे सनतकार पाकिस्तान जहा सफीर दुनिया में सुणप है दुखी हालत में हुकूमत जो साथ देने सदन थोड़ा हूं बजट में भी सदन मुशावरत शामिल होंगी।

0: सोरहं ॼणा फौत, पंजाह खां वधीक ज़ख़्मी। गाज़ी अहमद जे भर पासे में भितियूं ऐं छपरा किरण सबबि ॿिनि औरतुनि समेत पंज ॼणा हयाती विञाए वेठा, ॾह खां वधीक ज़ख़्मी थिया। पोतनि में उमेर, चनेश्वर महर, मुसमात राणी, अफ़ज़ल पली ऐं हिकु औरत शामिल। नवाबशाह ऐं भर पासे तूफ़ानी बरसाति सबबि वण ऐं भितियूं किरण जे नतीजे में ॿिनि औरतुनि समेत पंज ॼणा फौत, वीह ज़ख़्मी। पोतनि में अब्दुल मजीद, मोहम्मद हमीर महर, असलम महर, मुसमात खातून ऐं मुसमात लाल खातून शामिल। मोरो ऐं भर पासे तूफान सबबि सोलर टेक्स्ट ऐं साइन बोर्ड किरण जे नतीजे में हिकु औरत समेत ॿ ॼणा फौत थिया, पंज खां वधीक ज़ख़्मी। खारुशाह भरिसां भुटी में तेज़ तूफान सबबि घर जी भिति किरण जे नतीजे में फातिमा पंवर दॿिजी फौत थी वई। मेहर ऐं कैनशाह में सोलर प्लेट ऐं भितियूं किरण वारनि वाकियनि में ॿ ॼणा फौत, अठ ज़ख़्मी थिया। राधण वेझो ॻोठ बालिशाह में भिति किरण ऐं सोलर प्लेट किरण सबबि हिकु ॼणो फौत थी वियो, ॿ ॼणा ज़ख़्मी थिया। नौशहरो फिरोज ज़िले में तूफान सबबि अंबनि जे बाग़नि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो। तेज़ तूफान ऐं बरसातुनि बाद लाड़काणो समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जे बंधियल बिजली अञा बहाल न थी। सख़्त गर्मीअ सबबि रहवासी सख़्त परेशान। सेप्को बंधियल 46 ग्रिड स्टेशन मां 47 खे बहाल करण जी दावा करे छॾी। सेप्को चीफ चयो आहे त बिजली फराहम कंदड़ टावर किरण सबबि ग्रिड स्टेशन बंदि थियूं आहिनि। बंदि थियल 46 ग्रिड स्टेशन मां 47 खे बहाल कयो आहे। ॿियनि जी बहाली जो कम जारी आहे। बिजली जी मुकमल बहाली में 72 कलाक लॻी सघनि था। सिंध हुकूमत कणक जी ख़रीदारी वारो हदफ़ हासिल करण में नाकाम। ओपन मार्केट में कणक जो अघु वधीक हुअण सबबि सिंध हुकूमत जी ख़रीदारी वारो अमल रुकजी वियो। सिंध हुकूमत कणक जी ख़रीदारी वारी रखियल 10 लख मैट्रिक टन मां रुगो 78,000 मैट्रिक टन कणक हासिल करे सघी। हदफ़ हासिल न करण ते ख़ुराक खातो परेशान।
1: एक अमीर खत्ते की गरीब अवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही है। अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फैसला होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये अवाम का एक सवाल है। और चीफ इलेक्शन कमीशनर बिल्कुल बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना। पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटी पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं। लोगों को हक मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त मैं समझता हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी है इस इलेक्शन को एक आइडियल इलेक्शन बनाना। पंजाब वालों द्वारा रवैया जो पंजाब की अवाम के साथ आप रखते हैं, वो यहां की अवाम और पंजाब की अवाम में बड़ा फर्क है। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब ने जो 2-3 काम किए उस पर अवाम को बड़े साथ।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: एक और संगे मील उबूर। इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर। हुकूमत सिंध।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यू मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: जी ए एफ एम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की अमरीका से गालन में शामिल होने की तस्दीक कर छी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से भी कावड़ में गालण जो इतराफ। डोनाल्ड ट्रंप चया है शायद कें वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी कया। तेहरान से एटमी हथियार न रखने ते इतफाक वो है। ईरान तकरार खत्म थो तो तेल जो कीमतू भी घटी वेंदी। ईरान में इन वक्त जमीनी फौज मोकलण की जरूरत ना। नेतन्याहू के लबनान से लगातार हमलन सबब परेशान हुस जै सबब नेतन्याहू से कावड़ में गालायो हो। ईरान से गाल खत्म थियण वाली खबरू गलत गुमराह कदड़। ईरान से मुआदे तई पोचण जो वक्त अची वो है।

7 जून को आप बड़ी तादाद में निकले, आप तारीखी तादाद में निकले, तीर पे मोर लगाए, मेरे उम्मीदवारों को मुंतखब करवाए और इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ये हुकूमत बना के दिखाऊंगा। हमारा साथ, हमारा ताल्लुक सिर्फ सियासी नहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आवाम का

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की करो ले।

पागल। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: न्यूट्री नाश्ते हो बुधाए तो सही तो इनकार कयो। मुशरफ की हुकूमत बाद मर्द हुर की हुकूमत आई जै एक लत से समूरा फौजी अड्डा बंद कया मेहमान के खुदाफिस फौजी अड्डन की बंदिश में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत जो कारनामो है। वफाकी बजट इख्तिलाफन की खात्मे लाए हुकूमत जो कोशिशों तेज नायब वजीर आजम इसहाक डार की अगुवाणी में हुकूमती वफद की पीपुल्स पार्टी के वफद से मुलाकात नाणे वारो वजीर मोहम्मद औरंगजेब बिलाल अजहर कियानी शरीक पीपुल्स पार्टी वफद में नवीद कमर शेरी रहमान वो वजीर मुराद अली शाह शामिल बीआईएसपी समेत बजट से गालू।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामराई की अमरीका से गालियों में शामिल होने की तस्दीक कर छी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से रुकावट में गालण जो इतराफ। डोनाल्ड ट्रम्प तो शायद कें वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी कया। तेहरान से एटमी हथियार न रखने से इतफाक है। ईरान तकरार खत्म थो तो तेल जो कीमतों भी घटी वो। ईरान में इन वक्त जमीनी फौज मोकलन की जरूरत न है। नेतन्याहू की लिबनान से लगातार हमलन सब परेशान हो जै सबब नेतन्याहू से कावड़ में गाल हो। ईरान से गाल खत्म थाली खबरू गलत गुमराह कदड़। ईरान से मुआदे तक पोचने वक्त अची व्यो है।

अमरीका ऐं ईरान जा हिक भेरो ॿीहर हिक ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला, ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए ते अंगराई ऐं जंगबंदी मुआदे जी भञ कड़ी करण जा बि इल्ज़ाम। पासदारान इनकलाब जी कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं सामूंडी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारान इनकलाब चयो आहे त अमरान हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले जे जवाब में कार्रवाई कई। अमरीका जी फिफ्थ फ्लेट हेडक्वार्टर ऐं एयर बेसिस खे बि निशानो बणायो वियो। ईंदड़ जवाब वधीक सख़्त हूंदो। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। जवाबी कार्रवाई कंदे ईरानी कशम बेट में फ़ौजी ठिकाणनि खे बि निशानो बणायो वियो। ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहिनि लॻा। कुवैत ते फायर कयल ॿ मिज़ाइल बस्ते में ई किरी पिया। बहरीन मथां फायर कयल टे मिज़ाइल अमरीकी ऐं बहरीनी फ़ौज किराया। अमरीकी बहरी जहाज़नि ते टे ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हैदराबाद, दादू, दारखाना, जेकबाबाद, नवाबशाह, क्वेटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मूं सरीले सडड़ा साथी सडु नदी विलहिए जे वखाण ते तोड न तारी हेडा हाना थीन बुरे हिन बंभोर में।

डूंगर डुखो हुयम खे दिलासा ॾिजां घणो पुछजे तिन खे जिन वटां हो त वञो तूं कीअं कंदा तिन पाण पेर डुखो ई

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पहली बादशाह डैम तामीर कयो वञे, पोइ कंहिं ॿिए मनसूबे जी सिर रखी वञे। सदर अब्दाली जी हुकूमत साज़िश करे ख़तम न कई वञे हा त बादशाह डैम बि ठही वञे हा। जेकॾहिं सदर ज़रदारी सी पेक न आणे हा त तव्हां ओरेंज ट्रेन किथां आणियो हा? हिकु क़ैदी 420 चवे थो त हुन एब्सोल्यूटली नॉट चयो, ॿुधाए त सही तो छा खां इनकार कयो हो? मुशरफ जी हुकूमत बाद मर्द होर जी हुकूमत आई, जंहिं हिकु लत सां समूरा फ़ौजी अॾा बंदि कया ऐं महिमाननि खे ख़ुदा हाफ़िज़ चयो। आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो त पीपल्स पार्टी कामयाब थियण बाद गिलगित बल्तिस्तान खे सभु सहूलियतूं फराहम कंदी। वफ़ाक़ी बजट ते इख़्तिलाफ़नि जी ख़ात्मे लाइ हुकूमत जूं कोशिशूं तेज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी अॻवाणी में हुकूमती वफ़द जी पीपल्स पार्टी जे वफ़द सां मुलाक़ात। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब, बिलाल अज़हर कयानी शरीक। पीपल्स पार्टी वफ़द में नवीद कमर, शेरी रहमान ऐं वॾो वज़ीर मुराद अली शाह शामिल। बीआईएसपी समेत बजट ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। हुकूमती ज़रियुनि जो चवण आहे त बजट ते पीपल्स पार्टीअ सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। पीपल्स पार्टी समेत इतिहादनि जा बजट ते ख़र्चा ख़त्म कया वेंदा, गॾजाणियुनि जो सिलसिलो बि जारी रहंदो।

वफाकी हुकूमत नए माली साल के बजट में मिल्कियतुनि जी खरीद ऐं विकिरे ते टैक्स घटाइण जी तजवीज़ तैयार करे वरती। ज़रियनि मूजिबि वफाकी हुकूमत तामीराती शोबे खे हथी वठण लाइ मुतहरिक मिल्कियतुनि ते टैक्स जी शरह 1.5% मां घटाए 2.25% करण जी तजवीज़ तैयार कई आहे। गैर मुतहरिक मिल्कियतुनि ते बि टैक्स 4.5% मां घटाए 1.5% रखण जी तजवीज़ आहे। मामले ते IMF सां बि मुशावरत जारी आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खमनाई जी अमरीका सां ॻाल्हियुनि में शामिल हुअण जी तस्दीक करे छॾी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सां बि कावड़ में ॻाल्हाइण जो एतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप चयो त शायदि कंहिं वक़्तु मुश्तबा खमनाई सां मुलाक़ात बि कयां। तहरान सां एटमी हथियार न रखण ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे। ईरान तकरार ख़तम थींदो त तेल जूं क़ीमतूं बि घटिजी वेंदियूं। ईरान में हिन वक़्तु ज़मीनी फ़ौज मोकिलण जी ज़रूरत नाहे। नेतन्याहू जी लिबनान ते लगातार हमलनि सबबि परेशान हुअसि, जंहिं सबबि नेतन्याहू सां कावड़ में ॻाल्हायो हो। ईरान सां ॻाल्हियूं ख़तम थियण वारियूं ख़बरूं ग़लति ऐं गुमराह कंदड़ आहिनि। ईरान सां मुआदे तक पहुचण जो वक़्तु अची वियो आहे। ईरान ऐं अमरीका जी हिक ॿिए ते हमलनि बाद सफारती कोशिशूं तेज़। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राखचीअ जा पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र, फ्रांस जे अॻवाननि सां राब्ता। ईरानी परडेही वज़ारत मूजिबि अब्बास राखची पाकिस्तान जे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐं ॿियनि मुल्कनि जी क़यादत सां सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अमरीका ऐं ईरान जा हिक भेरो ॿीहर हिक ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए ते अगराई ऐं जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी करण जा बि इल्ज़ाम। पासदारान इनकलाब जी कोयत ऐं बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं सामूंडी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारान इनकलाब चयो आहे त अबनाह हुर्मुज में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले जे जवाब में कार्रवाई कई। अमरीका जी 5th फ्लेट हेडक्वार्टर ऐं एयर बेसिस खे निशानो बणायो वियो। ईंदड़ जवाब वधीक सख़्तु हूंदो। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। जवाबी कार्रवाई कंदे ईरानी कशम ॿेट में फ़ौजी ठिकाणनि खे बि निशानो बणायो वियो। ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहिनि लॻा। कोयत ते फायर कयल ॿ मिज़ाइल रस्ते में ई किरी तबाह थी विया। बहरीन मथां फायर कयल 3 मिज़ाइल अमरीकी ऐं बहरीनी फ़ौज किराया। अमरीकी बहरी जहाज़नि ते 3 ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: बाजरा दुलवे

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वफाकी हुकूमत नए माली साल की बजट में मिर्चन की खरीद ए विक्रे से टैक्स घटाने की तजवीज तैयार करे वरती। ज़रीन मूजिब वफाकी हुकूमत तामीराती शोबे के हथी वठण लाइ मुतहरक मिल्कियतुनि ते टैक्स जी शरह 2.5% मां घटाए 2.25% करण जी तजवीज़ तैयार कई आहे। गैर मुतहरक मिल्कियतुनि ते बि टैक्स 4.5% मां घटाए 1.5% रखण जी तजवीज़ शामिल। मामले ते IMF सां बि मुशावरत जारी आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खमनाई की अमरीका से गालिन में शामिल होने की तस्दीक कर छी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू सांबे कावड़ में गायण जो एतराफ। डोनाल्ड ट्रम्प शायद कें वक्त मुश्तबा खमनाई से मुलाकात भी कया। तहरान से एटमी हथियार न रखने से इतफाक है। ईरान तकरार खत्म थन्द तेल जो कीमतों भी घटी वेंद। ईरान में इन वक्त जमीनी फौज मोकलण की जरूरत न है। नेतन्याहू की लबनान से लगातार हमलन सब परेशान हुस जै सबब नेतन्याहू से कावड़ में गलायो हो। ईरान से गाल खत्म थियण वालू खबरू गलत ए गुमराह कदड़ आन। ईरान अमरीका के एक बे हमलन बाद सफारती कोशिशों तेज। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची जब पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया कतर मिस्र ए फ्रांस के अगवाड़न से फोन से रब्ता। ईरानी परदेही वजारत मूजिब अब्बास राखची पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिन मुल्क की क्यादत से भी सूरत हाल से गालबोल कई है।

अमेरिका ऐं ईरान जा हिक भेरो ॿीहर हिक ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला, ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए ते अग्राही ऐं जंग बंदी माहिदे जी भञकड़ी करण जा बि इलाम। पासदारान इनकलाब जी कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकी फौजी अॾनि ऐं सामूंडी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारान इनकलाब चयो आहे त अबनाए हुरमज में ईरानी ऑयल टैंकर ते हमले जवाब में कार्रवाई कई, अमरीका जी फिफ्थ फ्लेट हेडक्वार्टर ऐं एयर बेसिस खे निशानो बणायो वियो। ईंदड़ जवाब वधीक सख़्त हूंदो। अमरीकी सेंटकॉम चाहे त ईरान जा बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। जवाबी कार्रवाई करे ईरानी कशम बेट में फौजी ठिकाणनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी मिज़ाइल निशाने ते नाहिन लॻा। कोच ते फायर कयल ॿ मिज़ाइल रस्ते में ई किरी तबाह थी विया। बहरीन मथां फायर कयल टे मिज़ाइल अमरीकी ऐं बहरीनी फौज किराया आहिनि। अमरीकी बहरी जहाज़नि ते टे ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे हकी करो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाठा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कुवैत के मुल्की हदन में 13 ईरानी मिजाइल और 17 ड्रोन तबाह करने की दावा। हमलन बाद कुवैत जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद, एक जन मारजी वो, 63 जख्मी। मारजी वेल शख्स की सुणप भारतीय शहरी तौर कई वही। कुवैती परदेही वजारत हमलन की मजम्मत कन्दे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिविल आबादी के निशानो बनाया वो। कुवैत में मुकर्रर ईरानी सफीर की कुवैती परदेही ऑफिस तलबी। एहतजाजन खत डेण से गड बिन सफारतकार के भी नापसंदीदा करार दई वापस वन।

0: वफाकी बजट ऐं कानून साज़ी वारे मामले ते पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी ॿी गॾिजाणी बि बिना नतीजे ख़तम। बजट ऐं कानून साज़ी ते पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में इख़्तिलाफ़ बरक़रार। ॿिन्ही पार्टियुनि जो मामिलो सीनियर क़यादत आॾो रखण ऐं मुलाक़ात जी तजवीज़। ॾींहं ॿिनि में हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टीअ जी सीनियर क़यादत विच में मुलाक़ात थियण जो बि इम्कान। अॼोकी गॾिजाणी में लीगी वफ़द जी क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कई। नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब, बिलाल अज़हर कियानी बि गॾिजाणी में शरीक हो। पीपल्स पार्टी वफ़द में नवीद कमर, शेरी रहमान ऐं वॾो वज़ीर मुराद अली शाह शामिल हुआ। हुकूमती ज़रियुनि जो चवण आहे त बजट ते पीपल्स पार्टी सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी रहंदो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपने सुबह में ये भी ये किया वो किया, मैं उनको बताना चाहता हूँ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क।
0: मेट्रो बनाए किसी एक शहर में को ट्रेन चेन चलाया तो इसलिए कि सदर जरदारी के 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से आपको ये वसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया वो किया। अगर सदर जरदारी CPAC नहीं लेकर आता तो तू कहां से ये ऑरेंज ट्रेन बना के दरवा देते अपना शहर को? तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये जमर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। आपसे वादा करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला 7 जून के बाद पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है और हम ये काम पूरा कर देंगे। तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट, हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट?
2: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जी वफाक में इत्तेहादी जमात नून लीग ते तनकीद, जयामीर बादशाह डैम की तामीर जल्द शुरू कर रेथा मुकम्मल करने जो मुतालबो। जयामीर में चूंड जलसे के खिताब कंदे पीपी चेयरमैन चयो तो भारत में मोदी हुकूमत पानी के दहशतगर्दी तौर इस्तेमाल कर रही है। बादशाह डैम पाकिस्तान की जरूरत है, वजीर आजम बादशाह डैम लाए शाहबाज स्पीड डेखारे, डैम मनसूबो जल्द मुकम्मल करे, पेरी बादशाह डैम तामीर किया वे कें भी मनसूबे की सिर रखी वे, सदर जरदारी की हुकूमत साजिश करे खत्म न की वे हाथ, बादशाह डैम भी ठही वे हा, जैसे सदर जरदारी CPAC न आने हा तो तव ओरेंज ट्रेन किथा आयो हा? एक कैदी 420 चवे तो एब्सोल्युटली नॉट चयो, बुधाए तो सही तो इनकार किया हो? मुशरफ की हुकूमत बाद मर्द होर की हुकूमत आई जै एक लत से समूरा फौजी अदा बंद कया, मेहमान के खुदा हाफिज चयो। आसफा भुट्टो जरदारी चयो तो पीपुल्स पार्टी कामयाब थियण बाद गिलगित बल्तिस्तान के सब सहूलतू फराम कंदी।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की अमरीका से गाल में शामिल होने की तस्दीक कर छी। साणस मुलाकात की भी ख्वाहिश जाहिर। इसराइली वजीर आजम ने कावड़ में गाल इतराफ। डोनाल्ड ट्रम्प कें वक्त मुश्तबा खामनाई से मुलाकात भी कया तन साइटमी हथियार न रखने से इतफाक पो है। ईरान तकरार खत्म तो तेल जो कीमत भी घटी वेंद। ईरान में इन वक्त जमीनी कुछ मोकलने की जरूरत ना है। नेतन्याहू जी लबनान से लगातार हमलन सबब परेशान हुस। जै सबब नेताहू सा कावड़ में गालायो हो। ईरान से गाल खत्म थे वाली खबरू गलत आन। मुआदे वक्त अची वो है। मिसाइल